फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मंगलवार 13 अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन और आप सभी सुनने वालों को शुभ नवरात्रि बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है और हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी मोटरकार में आपकी घरों में। यहाँ से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। यहाँ से प्रोग्राम का पहला भजन पेश किया जा रहा है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

0: रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मंगलवार का दिन आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। इन दिनों नवरात्रि है तो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर चले आपके बार सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है। आज चंद्रघंटा माता जी का दिन है तो चले सुंदर सा भजन बस मिलकर सुनते हैं। आप सभी को शुभ नवरात्रि बस पेश किया जा रहा है।
1: नवरात्र के तृतीय दिवस में हम सभी जगत भवानी अम्बा कल्याणी के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें।

सुंदर सा भजन माता जी का भजन बस प्रोग्राम में नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आपकी बार लखबीर सिंह लाखा की आवाज में सुंदर सा माता जी का भजन बस पेश किया जा रहा है।

0: दिल की आवाज में ये सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सर है 7:00 प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है। चले प्रोग्राम में नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।
1: जब जब भीड़ परी भगतन पे

सुंदर सा भजन नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई है। आज माता चंद्रघंटा का दिन है और दर्द दाह है खासतौर पर नवरात्रि का, तो चले सुंदर सा चंद्र घंटा माता जी का चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा माता चंद्रघंटा चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले यहां से हम आरती भजन की ओर ले चलते हैं और इन दिनों नवरात्रि है तो आपकी सेवा में पेश किया जाएगी माँ चंद्रघंटा सुंदर सा आरती भजन। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ और शुभ नवरात्रि के साथ ये सुंदर सा आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, सुनने वालों यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। कल बुधवार है, कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर सुनते ही रहना, जो रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो चले यहां से हम आपको ले चलते हैं खबरें की ओर, रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फकीर से इन्फॉर्मेशन की ओर, और उसके बाद तुरंत आगामी प्रोग्राम आप लोगों की सेवा में हम लेकर के आने वाले हैं।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

Udit Narayan और अलका जी की आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, 13 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से उदित नारायण और अलका प्रोग्राम में एक हिंदुस्तानी फिल्म का नाम है।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 10 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे शान और श्रेया जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म फाइट क्लब उसी फिल्म का गाना की ओर

रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए फिल्म फुटपाथ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, अभी तक करीबन 9 बजे से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो चले पहला पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। लेकिन पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो पहला गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम गंगा जमुना, मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ओ चलिया रे चलिया, विजंती माला एंड दिलीप कुमार का फिल्म गंगा जमुना फिल्म का नाम।

आदानी फिल्म गंगा जमुना उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसनों मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे महेंद्र कपूर जी की आवाज में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर तुम अगर साथ देने का वादा करो। पुरानी फिल्मी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म हमरास महेंद्र कपूर।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। महेंद्र कपूर के बाद लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म अपने हुए पराए, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर।

अपने हुए पराए फिल्म का नाम, लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

0: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम आराधना।
1: अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: है?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मी की निहार है?
2: है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: सोमवार है, आज सोमवार है।
1: मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आराधना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मुकेश एन सुमन कल्याण या कहिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। गाना एड फिल्म आवारा, फिल्म आवारा का गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा मुकेश और लता जी की आवाज में।

मनमोहन सिंह और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए और ये प्रोग्राम को आप जरूर जरूर सुनते ही रहना। एक गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी खास तौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। काफी दिनों के बाद ये गीत बस पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, बादल छाया हुआ मौसम, अंधेरा अंधेरा सा मौसम है, फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन, और सभी जो नवरात्रि मना रहे हैं सभी को एक शुभ नवरात्रि भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले प्रोग्राम में अब की बार मुखीस और सुषमा सरेस्ता के आवाज में गाना पेश

ये गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मन्ना डे की आवाज में, और अब की बार हम आपको ले चलेंगे आज की ये पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। सरी 420 फिल्म का नाम, 1955 का फिल्म है, 1955 का फिल्म, फिल्म सरी 420, मन्ना डे की आवाज में ये गाना, दिल का हाल सुने दिल वाला।

0: मन्ना डे की आवाज में फिल्म श्री 420 उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम है कि सोमवार रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाले हैं रोटरडम अहोई आरटीएम स्टेज में। और आपको भी ये खबर किया जा रहा है 70% से ज्यादा 50% से ज्यादा टिकट बिक चुका है। अगर आप कॉन्सर्ट शो को देखना चाहेंगे तो जल्द से जल्द अपना टिकट जो है आप खरीदिए iStreamTickets.com वेबसाइट पर। मेयर दान 50% टिकट बिक चुका है इस कॉन्सर्ट के लिए, तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए iStreamTickets.com वेबसाइट पर। उसके साथ भी आपको खबर किया जा रहा है जब भी आप आने वाले दिनों सफर पर जाना चाहेंगे, दुनिया की सैर करना चाहेंगे, यानी कि इंडिया भारत देश जाना है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की ओर या बेल्जियम आर्डेन राजस्थान इंडिया की ओर आप जाना चाहेंगे तो सफर कीजिए सिवा पारक रेसन के साथ। सिवा पारक रेसन के साथ सफर कीजिए, दुनिया की उड़ान कीजिए, सस्ती दामों में आप सफर कर सकते हैं। और खास तौर पर होली टूर भी लाया जा रहा है इंडिया भारत देश की ओर, तो जब भी आप सफर करना चाहेंगे सफर कीजिए सिवा पारक रेसन के जरिए। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है shivapark.nl shivapark.nl वेबसाइट पर आप जाइए और सभी इंफॉर्मेशन आप लीजिए जब भी आप आने वाले दिनों सफर पर जाना चाहेंगे, दुनिया की शेयर करना चाहेंगे।
1: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Radio SBS. Vakbond CNV meldt pijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op... Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Radio SBS. Vakbond CNV meldt pijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen.

यही तारीख है जबकि द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए 13 अक्टूबर 1987 में। किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आज 39 साल हुआ है नेहनन डरतख यार कि किशोर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो चले उनके याद में कुछ गाने, उनकी आवाज में कुछ गाने पेश किया जा रहा है, कुछ डुएट सॉन्ग होगा। तो गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम सफर।

1987 में खासतौर द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया है 13 अक्टूबर 1987 में। आज ठीक 40 साल हुआ है, 39 यार हुआ है कि किशोर कुमार इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी याद में आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में कुछ गाने पेश किया जा रहा है सभी फैंस के लिए। किशोर कुमार, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की याद में हमारा आज पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में इस आखिरी घंटे के प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में कुछ उनके गाने कुछ डुएट सॉन्ग्स भी पेश किया जाएगी। आज 39 साल हुआ है 39 यार किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की आवाज में। किशोर कुमार की याद में ये सब गाने ये सब नख में आज की प्रोग्राम में

कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की याद में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम बनपूल। सभी फैंस के लिए, सभी किशोर कुमार का फैंस के लिए ये सब गाने पेश किया जा रहा है। आज 39 साल हुआ है निखनन डरता यार, जबकि किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और अपनी आवाज में खूबसूरत गाने हम सब के लिए छोड़कर चला गया है। किशोर कुमार बनपूल, फिल्म का नाम।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में बनपुल फिल्म ग्राम सोंगाई किशोर कुमार की याद में ये गाना बस पेश हुआ है।

किशोर कुमार की याद में, किशोर कुमार की आवाज में, या तो कुछ डुएट सॉन्ग्स आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। आज 39 साल हुआ है कि किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। और आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में, इस आखिरी घंटे का प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में कुछ गाने बस पेश किया जा रहा है। फिल्म ब्लैकमेल, एक गाना जो बहुत से सुनने वालों बस पसंद करते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।

0: आज के प्रोग्राम में पेश की गई पल पल दिल के पास तुम रहती हो फिल्म ब्लैकमेल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और खास तौर पर दले धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।
1: तो कहे
0: किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आज के प्रोग्राम में तकरीबन एक घंटे का प्रोग्राम में किशोर कुमार के आवाज में कुछ गाने बस पेश किया जा रहा है उनके याद में। आज 13 अक्टूबर है और आज ठीक 39 साल हुआ है नेहनन देर तखियार की किशोर कुमार इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। दो नगमे और प्रोग्राम में होगा। किशोर कुमार प्रोग्राम में उनके याद में ये गाना भी पेश किया जा रहा है। हमारी सभी फैंस के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए।

गाना जो पेश की गए किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए एक आखिरी गाना किशोर कुमार की याद में बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में, हमारी पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में आखिरी घंटे का प्रोग्राम में कुछ गाने किशोर कुमार की याद में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। सुनने वालों कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तो चले किशोर कुमार की आवाज में एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है किशोर कुमार की याद में सभी फैंस के लिए।

और प्रभा की आवाज में फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कसम से।

कयामत से कयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

ही एडवांस में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाख आप सभी के लिए बड़ा एक बार होता है 0362656560। एल्बम में से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ की आवाज में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकाल कर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मधु की आवाज में प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बॉलीवुड मेडली आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

0: प्यार ना
1: सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

रेडियो SBS के जरिए जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अल्ताफ सईद के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पाते, होठ मगर कुछ कह नहीं पाते, अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, कोई है जिसके बगैर।

घर आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम होगा धूप। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है। हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में फिल्म का नाम धूप। उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरि हरन और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एन सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाहा।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दिल

पुकारा। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस माइटी मुकेश।

आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार द मैन विद फ्रीक्वेंट वॉइस किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है ये जो मोहब्बत है किशोर कुमार द नेम ऑफ द मूवी कटी पतंग 1970 का फिल्म 1987 का फिल्म है फिल्म कटी पतंग एक्टिंग सॉन्ग बाय लेट राजेश खन्ना।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, ये जो मोहब्बत है, रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। गाना मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और हेमलता की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मन्ना डे प्रोग्राम में होगा और मन्ना डे की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना आपकी बार पेश होगा मोहम्मद रफी मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा करूं बीते कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। एक गाना फिर से आशा भोसले एंड किशोर कुमार के आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: चल रहा है
1: अभी समा नहीं है।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0382656560। लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे खास तौर पर मुकेश जी की ओर और मुकेश की आवाज में दमाइती मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम कन्हैया।

हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था कन्हैया। चले किशोर कुमार की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल दी फॉर हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ माय नेट वेबसाइट www.radiosbs.nl।

क्वा मैं तो फिल्म वीर ज़ारा तुम पास आ रहे हो गजाउं दो जगजीत सिंह एंड लता मंगेशकर हैव ती गहोर्ड इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर गाँव द फेदर मैथ हरी हरन एंड कविता कृष्णमूर्ति मैथ आय द फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जागले दिल जानी।

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वाज आउट ऑफ द फिल्म आशिकी एंड इज गेसोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Geet om Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Gieton Kleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Bas Ik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दित प्रार्थक लीजिए इस गजांग दो श्रेया घोषाल एंड कम आउट द फिल्म द बॉडी एंड हमने सुना है इस फोहत लीजिए विया रेडियो SBS आउट द फिल्म मेरे यार की शादी है गजांग दो उदित नारायण अलका याचिक सुदेश भोसले एंड जसविंदर ने रूला इस दित लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर।

गुरनालो इश्क मिठा इस द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा en gezongen door Lata Mangeshkar komt uit de film Aarzoo. Ajir uthkar ab kahan jaiyega? Jahan jaiyega, hame paiyega.

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरे हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर्स पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Lela met Lela.

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्य फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्य फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एहसान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आरडी बर्मन, लता मंगेशकर, एनकी शोर कुमार, वासुदेव लीचे, फिया रेडियो SBS इन het programma गीतों के लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 komt gezongen door Sean en Rochak, तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

जिंदगी तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,